न धा धीना का धा धीना धा न धीना धीना का तेरे के धा धीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रकदे तेरे के धा धा धिना का धा धा धिना त्रिकड़ा त्रिकड़ी त्रिकड़ा धा धा धिना त्रिकड़ा त्रिकड़ी त्रिकड़ा धा धा के धिना के ना धा धा के